0: Mania
1: Extreme Energy Drink.
2: सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचय पत्र नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-24-670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।

0: Twice FM, 90.4 MHz.
1: कुछ रिश्ते खत्म होकर भी कहानी खत्म नहीं करते। वक्त आगे बढ़ जाता है मगर कुछ पल पीछे ही रहते हैं।

0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज।
1: अगर कोई पूछे मेरी सुबह की वजह क्या है, मेरी शाम का सुकून क्या है, मेरी खामोशी में कौन रहता है, तो शायद बहुत लंबा जवाब नहीं होगा, बस एक नाम।

कहने को बहुत कुछ था, मगर दिल ने फिर सब आसान कर दिया एक शब्द में पूरी बात।